केला दादा जरा केला सरीदा चरणो बसे उया नुया गर्गा सियान सबा बोल जाम दुदिन के बाबोल ना